0: बोल बोल दिलावर कहाँ है बोल।
1: लाल जी गजब हो गया, मेहरू को कुछ गुंडे उठा के ले गए। देखिए मैं मेहरू को लेके आता हूँ, बारात आने वाली है, अब घर की इज्जत आपके आते हैं। हाँ सिकंदर से कुछ मत कहिए।

0: अच्छा तो यहां भी आ गया इसको लेने के वास्ते। अपन जिंदगी में बहुत कमीना देखा लंबू, तेरे से ज्यादा कमीना आदमी अपन आज तक नहीं देखा। क्या अक्का जिंदगी भर ये तेरा मासू का था?
1: नहीं।
0: उसके बाद जब दिल भर गया तो अपना बासी टुकड़ा उठा के दोस्त के आगे फेंक दिया। छोड़ा तुझ पर लंबू, मर्द की औलाद है तो उठ।

0: प्यारे लाल जी, अब क्या होगा? दूल्हा भी आ गया।
1: डॉक्टर साहब, जो भी होगा अच्छा ही होगा।
0: रामलाल जी की हालत बहुत खराब है, आप इधर संभालिए, मैं उधर संभालता हूँ।
1: बेहतर।
2: हे भगवान, अब क्या होगा?
3: मैं सर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जेडी और इसने मिलकर मेरू बहन को भी उठाया।
1: क्या?
3: विशाल भैया उनके पीछे गए हैं।
4: राम, तुम इनसे अगले को भागो, मैं इससे निपटता हूँ। बोल मेरू कहाँ है? बोल मेरू कहाँ है? बोल मेरू कहाँ है?
5: तेरी मेरू को तो अपन जोड़ा के बाजू में दफनाएंगा क्या?

0: 저에게 사도 아베세. 헤이, 헤이, 거, 저.
1: मियां ये सिकंदर साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या बात है?
2: जी अबू, मैं भी यही देख रहा हूँ, वो शायद किसी काम में मसरूफ होंगे।
1: हाँ।